दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। विश्वास बनाना और बनाए रखना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है। जब हम किसी के साथ विश्वास बनाते हैं तो इसमें समय, मेहनत और ईमानदारी लगती है। विश्वास खोना बहुत आसान है, लेकिन इसे वापस पाना और बनाए रखना बहुत कठिन। विश्वास खोने के लिए अक्सर एक छोटी सी गलती या अनदेखी काफी हो सकती है। जब विश्वास टूट जाता है तो रिश्तों में दरार आ सकती है और इसे सुधारने में समय लगता है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, आकाशवाणी जानागर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 मिनट हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू हो चुके हैं हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। दोस्तों, आज है साल 2024 अगस्त महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 21। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता पीबी दियोरी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुने गालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्र समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे चाहे योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने डायरेक्ट न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम्स जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायरेक्ट न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो इटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी कपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा आपका रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपकी पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 MHz है। अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली और दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी चैनल का रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

दोस्तों ये तो भक्ति गीत उम्मीद है मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव स्टार्ट शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी चैनल का रेनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, गालो भाषा के समाचार के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को एक बेहद ताजा ऊर्जा भारत और खुशनुमा प्रणाम। हमारे साथ जुड़े ईटानगर, नाहरलगन, पासीघाट, आलो जीरो से लेकर अरुणाचल प्रदेश से हर छोटे बड़े शहर, गांव और पहाड़ के श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। पहाड़ों की शीतल हवाएं, पैरों पर चहचहाती चिड़िया और अदरक वाली चाय की पहली चुस्की के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और साथी आरजे याजू लेकर आपका अपना विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, सुबह का ये सुनहरा समय एक नए संकल्प, नई आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रकृति हर नई सुबह हमें एक नया मौका देती है अपने तन और मन को तारोताजा करने का। तो आलस को दूर भगाइए, कमरे की खिड़कियां खोलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिन को शानदार बनाइए। आज के इस कार्यक्रम में हम तीन मुख्य विषयों पर बात करेंगे। पहला है योगा, जो पीठ और पाचन को ठीक करे। दूसरा, शरीर को जोड़ने के लिए जरूरी कोशिश। और तीसरा, कुछ ऐसे घरेलू और स्वास्थ्य संबंधित नियम जो आपकी दिनचर्या बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सुबह का एक प्यारा सा गीत।

स्वागत है एक बार फिर से आपका सुबह सवेरे में। दोस्तों, अक्सर योगा के नाम पर हम वही पुराने आसन करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसे अनोखे आसनों की जो आपके शरीर की अकड़ को तुरंत दूर करते हैं। मरजारियासना और वितिलासना, जिसे बिल्ली और गे आसन भी कहते हैं। सबसे पहले जमीन पर दोनों घुटनों और हथेलियों के बल चौकोपाई की तरह आ जाए। सांस अंदर लेते हुए पीठ को नीचे झुकाइए और गर्दन ऊपर आकाश की तरफ खींचे। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए पीठ को ऊंट की तरह ऊपर उठाइए और थोड़ी को छाती से लगाइए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और सुबह की जकड़न को पूरी तरह खत्म करता है। दूसरा है गोमुखासना। जमीन पर बैठकर दाएं पैर को बाएं जांघ के ऊपर रखें ताकि दोनों घुटने एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाए। अब एक हाथ ऊपर से और दूसरा हाथ पीठ के पीछे से लेकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। ये आसन कंधों के दर्द को ठीक करता है, छाती को खोलता है और बैठे रहने से होने वाली पीठ दर्द से मुक्ति देता है। रोजाना इनका अभ्यास जरूर करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और मनभावन गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। अब चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, यानी शरीर की घटी और जोड़ों को मजबूत करने वाले व्यायाम। सुबह सुबह भारी वजन उठाने के बजाय जोड़ों को खोलना जरूरी है। पहला है पूर्ण शारीरिक खिंचाव। एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके आगे की तरफ झुकिए। दोनों हाथ आगे वाले पैर के बगल में जमीन पर रखें। अब अंदर वाले हाथ को हवा में सीधा ऊपर उठाते हुए पूरी पीठ को छत की दिशा में घुमाइए। यह अकेला व्यायाम आपके कंधे, पीठ, कमर और थकने सभी को एक साथ खोलता है। दूसरा है बर्ड डॉग स्थिति। जमीन पर चारों हाथ पैरों के बल आकर अपना सीधा हाथ आगे और उल्टा पैर पीछे एक साथ हवा में सीधा उठाइए। 5 सेकंड तक रुके और फिर बदलकर दूसरे हाथ पैर से करें। यह व्यायाम कमर के निचले हिस्से को बेहद मजबूत बनाता है और झटके से बचाता है। ये दो व्यायाम आपको पूरा दिन लचीला और ताजा रखेंगे। तो दोस्तों आइए आप सुनते हैं हमारा संगीत का अगला नगमा।
1: सब्सक्राइब नाउ।

दोस्तों, गीतों की मीठी यादों के बाद वापस आते हैं हमारे अंतिम हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे रोजाना की कुछ आसन मगर प्रभावशाली आदतों के बारे में। दोस्तों, सुबह उठकर सादे पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें बस एक चुटकी सेंधा नमक मिला दीजिए। ये पेट के पाचन रस को जगाता है और शरीर के अंदर के तत्वों को संतुलित करता है। दूसरा है, सुबह उठते ही आधे घंटे के भीतर कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह की कच्ची धूप में जरूर बैठिए। ये दिमाग को जगाता है, मन को शांति देता है और रात को गहरी नींद लाने में मदद करता है। तीसरा है कि सुबह खाली पेट ज्यादा मीठी या तली भुनी चीजें खाने के बजाय उबले चने, मूंग की दाल के अंकुरित दाने या पौष्टिक दलिया ले। ये पूरा दिन आपको थकान से बचाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, ये था आज का सुबह सवेरे। आशा है आप इन नुस्खों को जरूर अपनाएंगे और एक स्वास्थ्य जीवन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना स्टेशन

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे या पता नहीं भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय FM 103.1 MHz से। दोस्तों, वेरी फर्स्ट फ्रेश एनर्जेटिक और बेहद खुशनुमा गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़े जीरो वैली की सुंदर वादियों हापोली ईटानगर नाहरलगुन पासीघाट आलो से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश के श्रोताओं को, आप सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। सुबह की ठंडी शीतल हवा, पैरों पर चिड़िया की चहचहाट और गर्म चाय की पहली चुस्किस के साथ मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम का, मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। ये एक ऐसा मंच है जहां ज्ञान, संगीत, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारे राज्य की सभी ताजा खबरें के साथ आती है। आज के शो में हम पलटेंगे 21 अगस्त की ऐतिहासिक पन्ने, जहां विश्व स्तर की घटनाएं और हमारे अपने देश भारत के मुख्य ऐतिहासिक किस्से आपके इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अरुणाचल टाइम्स के 21 अगस्त 2024 के सभी मुख्य समाचारों पर हम डालेंगे एक गहरी और विस्तृत नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन के पहले खूबसूरत और मन भावन गीत के साथ।

दोस्तों स्वागत है आपका मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के ग्लोबल हिस्ट्री सेगमेंट में। आइए जानते हैं 21 अगस्त के दिन दुनिया भर में कौन से ऐतिहासिक घटनाएं घटी। 1911 में दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग लियोनार्डो दी द विंसी की बनाई मोनालिसा पेरिस के मशहूर लोवरे म्यूजियम से चोरी हो गई थी। विंसेंजो पिरुगिया नाम के एक कर्मचारी ने इसे म्यूजियम से चुराया था। दो साल बाद जब ये वापस मिली तब तक इस चोरी ने मोनालिसा को पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आर्ट पीस बना दिया था। 1959 में प्रशांत महासागर में स्थित सुंदर द्वीप समूह हवाई को आधिकारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 58th राज्य के तौर पर शामिल किया गया था। इसने अमेरिका के भौगोलिक और सांस्कृतिक धरातल में एक नया अध्याय जोड़ा। 1986 में कैमरून की ज्वालामुखी झील लेक न्योस से अचानक लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक विशाल बादल निकला था। इस दुर्लभ और भयानक प्राकृतिक आपदा और आसपास के गांवों में लगभग 1700 से ज्यादा लोगों और हजारों मवेशियों की जान ले ली थी, जो पर्यावरण विज्ञान के इतिहास में एक बड़ी सीख बनी। 1969 में जेरूसलम के ऐतिहासिक और पवित्र अल क्वासा मस्जिद में आग लगाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसने पूरे विश्व के मुस्लिम देशों में भारी आक्रोश पैदा किया। इस घटने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों दुनिया के इन रोचक पन्नों के बाद आइए लुत्फ उठाते हैं हमारे अगले प्यारे नगमे का।

दोस्तों अब वक्त है हमारे अपने देश भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को देखने का। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक और गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी का आज ही के दिन 1931 में निधन हुआ था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया और महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम की धुन को पूरे देश में अमर बनाया। 1972 में को भारतीय संसद ने ऐतिहासिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी थी। इस कानून ने देश के संकटग्रस्त पशुओं पक्षियों और राष्ट्रीय अध्यानकों को कानूनी सुरक्षा कवच दिया और आधुनिक वन जीवन संरक्षण की नींव रखी। सेनाएं को मंदिरों और शादियों से निकलकर विश्व मंच पर स्थापित करने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी ने 21 अगस्त 2026 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनका संगीत और गंगा जमुना तहजीब आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। 1915 में महान भारतीय अमेरिकन खगोल भौतिकविद डॉ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के ऐतिहासिक शोधनों को याद किया जाता है। उन्होंने तारों के अंत और ब्लैक होल बनने की सीमा खोजी, जिसे विज्ञान की दुनिया में चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए आप समाचारों की तरफ बढ़ते हैं, मधु से पहले सुनते हैं।

दोस्तों गानों के बाद अब वक्त है आज के दी अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचारों पर एक विस्तारित नजर डालने का। कांग्रेस डिमांड गवर्नमेंट कम क्लीन ऑन अलेज्ड चाइनीज इंट्रूजन इन तकसिम। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि अपर सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाके तकसिम में चाइनीज पीएलए की संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ के आरोपों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जाए। ना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रशासन को लिखे गए पत्र और छात्र संगठनों की चिंताओं का हवाले देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सीमा पर रहने वाले स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए सरकार को सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। जीओपी अपॉइंट्स टू एस एससी स्टैंडिंग काउंसिल। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राज्य के कानूनी मामलों की पैरवी के लिए दो नए स्टैंडिंग काउंसिल की आधिकारिक नियुक्ति की है। पुराने स्टैंडिंग काउंसिल अनिल श्रीवास्तव के इस्तीफे के बाद यह नया कदम उठाया गया है कि ताकि शीर्ष अदालत में राज्य के बाउंड्री डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले बिना किसी रुकावट के मजबूत कानूनी

दलीलों के साथ पेश हो सके। लेक्चरर गेट्स 5 years इन जेल इन पॉक्सो केस। एक विशेष अदालत ने पॉक्सो कानून के तहत आने वाले मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एक कॉलेज लेक्चरर को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थाओं में छात्रों और छात्राओं के विश्वास और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अदालत शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। तो श्रोताओं, ये था आज का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। आशा करती हूं कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। यह आकाशवाणी टानर कारण एफ एम 103.1 MHz से दोस्तों कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दागिन भाषा में समाचार ये आकाशवाणी चैनल का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। आप सभी को एक बेहद शीतल खुशगवार और ताजा प्रणाम। तो दापोरिज्जे की सुंदर वादियों सुबनसिरी नदी के किनारों ईटानगर नाहरलगुन पासीघाट तवांग से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में बैठे हमारे प्यारे श्रोताओं का दिन आनंदमय हो। सुबह की हल्की ठंडक, पैरों पर चिड़िया की मीठी चहचहाट और हाथ में गर्म चाय का प्याला, ऐसे सुहाना मौसम में दिल हमेशा पुरानी मीठी यादों की तरफ खींचता है और उन्हीं यादों को संगीत के तारों से जोड़ने के लिए मैं हूं आपके अपने साथी आरजे याजू लेकर आपका मनपसंद सुनहरा कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों सदाबहार यानी वो गीत जो कभी पुराने नहीं होते, जिनकी धुने हर दौर में दिल को छू लेती है और जिनके बोल जिंदगी का सच बयान करते हैं। आज के इस सफर में हम ना सिर्फ सुनेंगे कलेजे को सुकून देने वाले शानदार विंटेज संगीत के नगमे, बल्कि आईएमडी अरुणाचल प्रदेश केंद्र द्वारा जारी आज के मौसम का पूरा और विस्तृत हाल भी जानेंगे, ताकि आप अपने दिन और यात्रा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए यादों के सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे सुनहरे दौर के गीत के साथ।

दोस्तों, गीतों की मीठी शुरुआत के बाद अब आते हैं हमारे मौसम के पहले हिस्से पर। आईएमडी ईटानगर के अनुसार आज हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स नाहरलगुन, न्यूजली और बंदरदेवा के आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सुबह के समय आकाश आमतौर पर बादलों से गिरा रहेगा, यानी जनरली क्लाउडी स्काई बना रहेगा। दोपहर के समय धूप और बादलों की आंख में चोली देखने को मिल सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर बाद या शाम के वक्त कैपिटल कॉम्प्लेक्स और फुटहिल इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश या थंडरी एक्टिविटी के साथ एक दो दौर की तेज बौछारी की पूरी संभावना है। आज ईटानगर और आसपास के अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है, जबकि रात और सुबह का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा में नमी 75 से 90% के आसपास रहेगी, जिससे दिन में हल्की चिपचिपाहट और शाम को ठंडक महसूस होगी। यदि आप आज शहर में किसी जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो छाता और रेनकोट साथ रखना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, आइए अब लौटते हैं संगीत के वादियों में और सुनते हैं एक और लाजवाब पुराना गीत।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों अब नजर डालते हैं आईएमडी अरुणाचल प्रदेश केंद्र द्वारा जारी पूरे राज्य के समस्त जिलों के विस्तारित मौसम बुलेटिन पर। पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी जिले जैसे तवांग, वेस्ट कामिंग, अपर और लोअर सुबनसिरी, कुरुंगकुमे, तवांग, बोमदिला, दिरांग, जीरो और कोलोरियांग जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आकाश मुख्यतः बादलों से ढका रहेगा। कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की सी मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले धरों पर शीतल हवाओं के साथ घना कोहरा छाने की आशंका है। सुबह और देर शाम के वक्त विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसीलिए बालूपुंग, तवांग और ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। पासीघाट, रोइंग, तेजू और नमसाई जैसे प्लेन और फुटहिल्स बेल्ट में मौसम आमतौर पर गर्म और ह्यूमिड रहेगा। आईएमडी के अनुमान के अनुसार सियांग और दिबांग नदी के कैचमेंट इलाकों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग जल स्तर पर निगरानी जरूर रखिएगा। कृषि और यात्रा करने वालों साथियों के लिए एक सलाह देना चाहूंगी। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि खड़ी फसलों में जल जमाव ना होने दें और आगे आने वाली बारिश को देखते हुए ड्रेनेज सुविधा ठीक रखें। आप लोग पहाड़ी रास्तों पर हल्की फिसलना और लैंडस्लाइड प्रोन स्ट्रेचेस पर यातायात थोड़ा धीमा रखने की सलाह दी गई है। मौसम के इस

विस्तारित के बाद चलिए अब वक्त हो गया है आज के इस खूबसूरत सफर को यहाँ विराम देने का। आशा है पुराने गीतों के इन लफ्जों ने आपकी सुबह को और भी शीतल और आनंदमय बना दिया होगा। साथियों, मौसम चाहे कैसा भी हो, अपने दिल का मौसम हमेशा खुशगवार बनाए रखिए, सावधान रहिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये था आकाशवाणी टनल करुण FM 103.1 MHz से। अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि, सूचना और संचार

0: प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे

0: अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पतिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलोंग केंद्र से समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों, समाचार के बाद अब समय है एक ऐसे कार्यक्रम का जहां हम बात करते हैं उन विषयों पर जो सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से समझने का मौका भी देते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका अपना कार्यक्रम हेलो ईटानगर और मैं हूं आपकी अपनी आरजी याजू। आज का दिन एक महत्व अंतर्राष्ट्रीय अवसर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हर साल 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाता है। इस दिन का उद्देश्य आतंकवाद की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को याद करना, पीड़ितों और बचे हुए लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना और उनके अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने की याद दिलाना है। और इस वर्ष का विषय है हीलिंग थ्रू मेमोरी यानी यादों के माध्यम से उपचार। लेकिन आज हेलो ईटानगर में हम सिर्फ इस दिन के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी दुख बड़ी घटना को याद करना क्यों जरूरी है। क्या किसी को याद रखना सिर्फ अतीत को याद करना है या फिर यादें हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य बनाने की दिशा भी दिखा दे सकती है। इसी विषय पर हम करेंगे थोड़ी सी बात। तो दोस्तों, जब हम किसी दुखद घटना को याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में दुख और पीड़ा की भावना आ सकती है। लेकिन याद रखना सिर्फ दुख को दोबारा जीना नहीं है। कई बार याद रखना इस बात का प्रतीक होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए मायने रखता था। आतंकवाद की घटनाओं में पीड़ित लोगों के परिवार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोते, उनके साथ उनके परिवार की जिंदगी, उनके सपने और उनकी रोजमर्रा की दुनिया भी बदल जाती है। इसीलिए ऐसे अवसरों पर पीड़ितों और उनके परिवारों को याद करना एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

यूनाइटेड नेशन के अनुसार आतंकवाद के पीड़ितों और सर्वाइवर्स को लंबे समय तक सहायता की जरूरत हो सकती है, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर। और यही से आज के विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है दोस्तों, हीलिंग थ्रू मेमोरी, यादों को सम्मान देना। पीड़ितों की कहानियों को सम्मान के साथ सुनना और उनके अनुभवों को नफरत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि समझ और शांति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना, आज का दिन हमें इसी बात की याद दिलाता है। तो इसी सोच के साथ अब सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग थ्रू मेमोरी के बारे में। दोस्तों यादें बहुत शक्तिशाली होती है। एक तस्वीर, एक आवाज, एक जगह या किसी व्यक्ति का नाम कभी कभी हमें पूरी एक कहानी याद दिला देता है। लेकिन जब यादें किसी दुखद घटना से जुड़ी हो तो उन्हें साझा करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के डिजिटल युग में हम किसी भी घटना की तस्वीर या वीडियो कुछ ही सेकंड्स में दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर चीज को साझा करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। किसी पीड़ित व्यक्ति की तस्वीर, उसके परिवार की निजी जानकारी या किसी दुखद घटना के दृश्यों को बिना सोचे समझे साझा करना उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए और अधिक पीड़ा का कारण बन सकता है। इसीलिए जिम्मेदार संचार बहुत जरूरी है। किसी भी दुखद घटना के बारे में जानकारी साझा करने से पहले हमें तीन बातें सोचनी चाहिए। क्या ये जानकारी सच है? क्या इसे साझा करना जरूरी है? और क्या इसे साझा करने से किसी को अनावश्यक पीड़ा तो नहीं होगी? ये तीन सवाल हमें एक जिम्मेदार श्रोता, दर्शक और डिजिटल नागरिक बनने में मदद कर सकता है। और इसी के साथ वक्त है एक और गीत का।

दोस्तों, आज का दिन हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझाता है। आतंकवाद का उद्देश्य सिर्फ लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ऐसे हिंसक घटनाओं का प्रभाव समाज में डर, अविश्वास और विभाजन भी पैदा कर सकता है, लेकिन यहीं पर हम सबकी जिम्मेदारी शुरू होती है। हमें किसी भी हिंसक घटना के पाप अफवाहों, नफरत और बिना जांच की हुई जानकारी को आगे बढ़ाना से बचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या समुदाय के गलत काम के लिए पूरे समुदाय को दोषी समझना भी उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा का जवाब और अधिक नफरत नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि शांति सिर्फ सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। शांति हमारी रोजमर्रा की बातों से भी शुरू होती है। हम किसी के बारे में क्या कहते हैं, हम सोशल मीडिया पर क्या साझा करते हैं, हम किसी अफवाह पर कितनी जल्दी विश्वास करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने से अलग सोचने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। आज के दिन हम उन सभी पीड़ितों और सर्वाइवर्स को याद करते हैं जिन्होंने आतंकवाद के कारण अपने जीवन में गहरी पीड़ा झेली। उन्हें याद करना सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, ये संकल्प लेना है कि हम अपने समाज में समझ, सम्मान, सहयोग और शांति को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर में हमने बात की हीलिंग थ्रू मेमोरी, यानी यादों के माध्यम से उपचार के बारे में। आज 21 अगस्त को मनाए जाने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद से प्रभावित लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उनकी कहानियों को सम्मान मिलना चाहिए, उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर उनकी पीड़ा को नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य बनाने की प्रेरणा के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, याद करना कमजोरी नहीं है, याद करना सम्मान है। और जब हम अतीत को समझकर उससे सीखते हैं, तब वही यादें हमें बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, और आप सुन रहे थे हेलो ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इसके बाद अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।